0: एंसल पैक किन लीजिए जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
0: एंसल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: अरे छोरा सौ कम गीत कर छै एक झापर मारो नि गाले लाल करी दू
1: काम कसै हमर ना भ्यासौ के उरे छौनी ने जिस्क कर कोन तोरा जिस्क तो

0: कैंसिल पैक किलिते जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक कैंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक लिलिते कैश फिर तक लिलिते
0: कैंसिल पैक किलिते सर लागू हुई कैंसिल नेपाल के लग

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: खुशी को खबर विगत चार दशक देखि बुटवल में निरंतर सेवा दिदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिल वस्तु को चार नंबर जितपुर में यही श्रावण चार गते देखि शुभारंभ भई संचालन में आइरहेको छ।
2: शुभारंभ को अवसर में विशेष छूट। थप जानकारी का लागि आले डेन्टल बाढ़गंगा एक जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस बैंक नजिक।

नए प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए को शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान को। श्री राधा गोलोक विहारी सरकार को। राष्ट्रदेव पशुपति।